0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: ব্যাংকিং খাইমত বিলি চি এটিএম মোবাইল দে ইন্টারনেট ব্যাংকিং গোপে বিবরণ আরি খাই বিলে তুই মাধ্যম ক্যারে নিপ্রে ছালি জানকারী রি বিষয়া নিয় কল পরিম সময় নিয় ঠকদিল খামো ব্যাঙ্গর কর্মচারী বীরা নিয় দেপ্রে বিবরণ রি বিষয়া ব্যাংক দি নীল পরিম নিয় তানি সতর্কতানা ঠদরিকা বচেনা সিদ্ধার্থ ব্যাঙ্গর ক্যালে জনহিতারি জারি সন্দেশ
1: সিদ্ধার্থ ব্যাংক সম্বন্ধ সদৈব ভরিলাই।
2: तिम्रो जन्मदिनको अवसरमा यो औठी उपहार तिमीलाई।
3: वाउ, कस्तो राम्रो डिजाइनको अनि कति चम्किलो, कहाँ बनाएको नि डार्लिङ?
2: अब तिम्रो लागि दिने उपहार पनि अन्त बनाएर भयो त, उही हाम्रो चिर परिचित जय बुद्ध ज्वेलरीमा बनाएको नि।
3: मलाई त एकदमै मन पर्यो।
2: तिमी हेर्दै मात्र जाऊ न, अझ हाम्रो विवाहमा त सुनको हार, मंगलसूत्र, सिक्री, टप, जन्तर, चन्द्रमा, छड्की तिलहरी, चुरी, बिन्दिया, चाँदीको पाउजु अनि सबै गरगहना जय बुद्ध ज्वेलरीमा नै बनाएर ल्याउँछु नि।
4: कम्प्युटर तौलमा छापावाला सुनबाट बनेका आधुनिक डिजाइनका रेडिमेड तथा अर्डर अनुसारका गरगहना, राशि अनुसारका पत्थर, चाँदीका सामानका साथै पुराना गरगहना सार्टफेट तथा सुनसादी खरिद बिक्रीका लागि
5: जय बुद्ध ज्वेलरी बेसी सहर लमजुङ एलजी डिलर सँगै प्रोप्राइटर मणिलाल विश्वकर्मा। फोन नम्बर 0665242435 2475। विश्वास तपाईँको, सेवा हाम्रो।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Ayah, modenya ama. Ayah ni,
1: के भयो दिदी तपाईलाई सन्चो छैन कि कसो
0: हेर न बाबु छाती दुख्ने

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी